इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: Ben.
1: Ben. Yeah. भाई तेरा बस लिख गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Available 12 hours a day, 7 days a week. So the NHS can be there for all of us when we need it. Find your closest one at gov.uk/NHS Fit for the Future. Available England-wide.
1: Himalaya Carpets की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: With LV, I can get my home insurance from just £119. They've made it easy for me to get a great price. And their 24/7 emergency helpline lets me look after what matters to me. Because insurance is simple when it's me and LV.
4: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers paid £119 or less November 2025 to April 2026.
5: Give your home its autumn glow-up with Dunelm. Cushions and throws that make your sofa impossible to resist? Done. Cozy curtains that keep the heat in when it's colder out? Done. Table set for dining in without forking out? Done. Your perfect bedding for a longer, deeper sleep? Beautifully done. This autumn, make your home feel a little more you. With Dunelm, the home of homes.
6: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या बात। किशोर कुमार लता जी, क्या यही प्यार है फ्रॉम द फिल्म रॉकी 1981। एंड आई लव दिस सॉन्ग सो मच, आई पुट इट इन अ शो दैट आई डायरेक्टेड, वेल अ लिटिल बिट एनीवे। 9:30 exactly on the dot, 30 minutes to go before I sign off and hand you over into the night sky to keep you company until tomorrow morning, and then Paul Shah will be on the air from 6 a.m. to wake you up Monday morning. It will be
1: next on Sunrise.
0: From the film Aina, Kumar Sanu and Asha Bhosle with Meri Saanson Mein Tum.
2: मेरे ख्यालों में तुम मेरे महबूब।
0: And the original version of Pal Pal Dil Ke Paas from the film Blackmail 1973. Pal Pal Dil Ke Paas Tum Rehti Ho. And if those are not good enough, we go even deeper into the archives and take you all the way back to 1969 from the film Aradhana.